पूरा गाना ऐसे लगता था जैसे दोस्तों ने जिंदगी को कंधों पर उठा रखा हो और दुनिया को कहा हो यार कल देखेंगे, एंड देन यू हैड सेकंड हैंड जवानी।

0: बिल्कुल बेपरवाह, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल उस उम्र की तरह जहाँ कॉन्सिक्वेंसेस नाम की चीज डिक्शनरी में होती ही नहीं थी। और फिर इन सबके बीच एक गाना, ना सबसे लाउड, ना सबसे कमर्शियल, ना सबसे वायरल, बस सबसे सच्चा। एक ऐसा गाना जो शोर खत्म होने के बाद भी साथ रहता था, जैसे समंदर के किनारे रात के 2 बजे बैठकर अचानक किसी की याद आ जाती है, जैसे एक पुरानी दोस्ती, जैसे एक अधूरी मोहब्बत, जैसे जिंदगी का वो पन्ना जिसे आप कभी बंद ही नहीं कर पाए। कॉकटेल 2 मुझे पसंद है, लेकिन कॉकटेल 1 मुझे याद है। और म्यूजिक में पसंद और याद के बीच जो फासला होता है ना, उसे ही टाइमलेसनेस कहते हैं। Here is my version of Timeless, Mohan Kannan और Sunidhi Chauhan की आवाज में। It's my pick of the week. ये है यारियां।
1: Pick of the week.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Suren ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 8.

0: जाइए सजना इस हफ्ते भी टॉप 10 में है, इट्स अ नंबर 8 एंड मुझे लगता था कि बॉलीवुड के बारे में मुझे सब कुछ पता है, फिर धुरंधर आई और मुझे रियलाइज हुआ मुझे कुछ नहीं पता है। सीरियसली दिसंबर में ऑडियंस ने पहली बार धुरंधर की दुनिया में छलांग लगाई। 7 महीने, 2 फिल्में, 3,200 करोड़ रुपए और आज धुरंधर बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। लेकिन इस फिल्म का सबसे बड़ा स्टार गायब है। नो इंटरव्यूज, नो विक्ट्री लैप, नो एंडलेस मीडिया अपीयरेंसेस, नो सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी हेडलाइंस। रणवीर सिंह इसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मुझे याद ही नहीं कि बॉलीवुड में ऐसा लास्ट कब हुआ था भाई। हमने राकेश बेदी जी को सुन लिया, हमने दानिश पंडोर को सुन लिया, हमने माधवन को सुन लिया और अब हम फाइनली मेजर इकबाल को भी सुन लेंगे।
1: जब आप एक्टिंग करते हैं या जब आप काम पे जाते हो, एक ही इंसान पे वो फिल्म नहीं बनती है। इट्स अ कलेक्टिव अप्रोच दैट यू हैव टू टेक। तो आप देखते हो कि जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो वो आपको देख कितना रहा है, यू नो, वो कितना ओपन है। और रणवीर इज बीन वेरी वेरी ओपन सजेशंस के लिए, रिहर्सल्स में, काम करने के टाइम पे। और सारी जो टीम थी वो वैसी थी, जितने भी डिपार्टमेंट थे, अगर हेयर हो, मेकअप हो, कॉस्ट्यूम्स हो, म्यूजिक हो, एक्शन हो, यू नो, डायलॉग हो, उनको इतनी छूट दी गई है बाय आदित्य धर। और इतनी ओपननेस थी उनके माइंड में कि वो जानते हैं कि ये आपका काम है, तो वो अलाउ करते हैं सभी को कि वो अपने ट्रिपल ए परफॉर्मेंस या ट्रिपल ए गेम टेबल पर ला।
0: अर्जुन रामपाल को सुनने के बाद एक बात समझ आ गई है, शायद धुरंधर की सक्सेस किसी एक सुपरस्टार की सक्सेस नहीं है, शायद ये एक रेयर फिल्म है जहां हर डिपार्टमेंट ने अपना ए गेम लाकर टेबल पर रख दिया। तो शायद इसलिए फिल्म इतनी बड़ी हिट बन गई। लेकिन फिर भी यार, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म का हीरो अब भी खामोश है और जब तक वो बोलेगा नहीं, मिस्ट्री जिंदा रहेगी। नंबर 7।

0: धुरंधर का आरी आरी इस हफ्ते नंबर 4 पर है और एक बात माननी पड़ेगी, बॉलीवुड को नॉस्टैल्जिया से बहुत प्यार है। पुराने गाने चाहिए, पुराने हुक्स चाहिए, पुरानी यादें चाहिए, बस पुराने सिंगर्स नहीं चाहिए। जरा सोचिए, धुरंधर में ये गाना जो आपने अभी सुना आरी आरी, वो है तम्मा तम्मा लोगे है, और साथ में है उदित जी की आवाज में ये वाला गाना। एंड देन हाल ही में यू ऑल्सो हर्ड है जवानी तो इश्क होना है का ये गाना कॉल्ड चुनरी चुनरी, जिसमें ओरिजिनल सिंगर अभिजीत नहीं है।
1: तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए।
0: एंड गेस व्हाट, अगला गाना काउंटडाउन पर है ऊंचा लंबा कद, एक और रिक्रिएशन। एंड मुझे रिक्रिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है, जिन आवाजों ने इन गानों को एवरग्रीन बनाया, फॉरएवर कूल बनाया, वो आवाजें आज कहां हैं? आनंद राज आनंद बेंच पर, अभिजीत भट्टाचार्य बेंच पर, उदित नारायण बेंच पर, रेयरली हर्ड, लेकिन उनके गाने हर दूसरे फ्राइडे को कमबैक कर रहे हैं। बॉलीवुड को गाना याद है, गाने वाला नहीं। और फिर पिछले हफ्ते संडे के दिन इत्तेफाक से एक वीडियो देखा और स्क्रीन पर आए अदनान सामी, और फिर वही गाना जिसके चलते अदनान से प्यार हो गया था।

क्या आवाज है यार, क्या कंट्रोल है, क्या वॉर्म्थ है। सबसे बड़ी बात, द सॉन्ग मेक्स यू फील, द सॉन्ग गिव्स यू फील्स। और तब मुझे एक सवाल खटका, व्हाई इज अदनान सामी सिटिंग एट होम? सीरियसली, आज के कितने सिंगर्स हैं जो अदनान सामी के साथ एक स्टूडियो में खड़े होकर कम्पीट कर सकते हैं? यार बहुत कम। बॉलीवुड का ये सच में अजीब लॉजिक है, पुरानी आवाजों की लेगेसी कैश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उन आवाजों को माइक्रोफोन नहीं देना है। खैर, जब तक सिंगर्स वापस नहीं आते, उनके गाने तो वापस आते ही रहेंगे, बॉलीवुड छोड़ेगा नहीं। और इस हफ्ते नंबर 3 पर है वेलकम टू द जंगल से आनंद राज आनंद साहब का ही गाना ऊंचा लंबा का और एवर। नंबर 3।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर टू

अशोका इस हफ्ते भी नंबर दो पर है यार। मुझे तो लगा था कि ये गाना सीधा नंबर वन तक पहुंच जाएगा इस बार, लेकिन एक बात हम बार बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इंडिया को उसके जासूस बहुत पसंद है। और इस वक्त इंडिया का सबसे फेवरेट जासूस स्पाई है हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रांगी, और शायद इसलिए शरारत 19 हफ्ते बाद भी नंबर वन पर बैठा हुआ है। लेकिन स्पाइस की बात निकली है तो 3 जुलाई को 2 नए स्पाइस इस लंबी कतार में जुड़ने वाले हैं, आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ। द फिल्म इज कॉल्ड अल्फा, और मुझे लगता है अल्फा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अल्फा खुद नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली धुरंधर है, क्योंकि धुरंधर के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस टोटली बदल चुकी हैं। अब ट्रेलर में सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ ग्लोब ट्रॉटिंग काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन एंट्रीज काफी नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली अल्फा का ट्रेलर देखकर मुझे बार बार लगा कि मैं कुछ नया नहीं देख रहा हूं, वही फेमिलियर ट्रोप्स, वही फॉर्मूला, वही टेम्पलेट। यस, बैकग्राउंड स्कोर के कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली इंप्रेसिव हैं, लेकिन जब एलीट असैसिंस की दुनिया में ऐसा डायलॉग आए कि वुल्फ की बेटी वुल्फ ही तो होती है, तो थ्रेट कम और टेलीविजन सीरियल ज्यादा लगने लगता है। एंड मे बी दैट्स व्हाई मैं अल्फा को अभी जज नहीं करना चाहता हूं, मैं उसे सिर्फ विश करना चाहता हूं द वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पोस्ट धुरंधर दुनिया में सरवाइव करना आसान नहीं है। अरे यार, कम से कम ऋतिक रोशन को ही सरप्राइज रहने देते, ट्रेलर में पूरी फिल्म तो वैसी दिखा दी। खैर, जिस पाए ने वो बेंचमार्क सेट किया उसका राज अभी खत्म नहीं हुआ है। जैस्मिन सैंडलर्स और मधुबंती बागची, यालीना और हमजा की शादी वाला गाना दिस इज शरारत 19th week at number 1।

0: एक और हफ्ता खत्म, कुछ गाने चार्ट्स पर चढ़ गए, कुछ नीचे आ गए और होपफुली कुछ नए ऑब्सेशंस मिल गए। ये था मिर्ची टॉप 20 का लेटेस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक नॉइज को कम सुनिए, म्यूजिक को ज्यादा। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Let's go crazy.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का countdown हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक होने वाला है, a special Gaana spotlight, all this and more। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से पूरे 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अनूप जैन की आवाज में उनका गाना अर्ज किया है, a Coke Studio भारत सॉन्ग इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री हो रही है, गाने का नाम है साडी सुन, हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर। इस गाने ने डेब्यू किया सीधा ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक, अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन नंबर 10, देन साडी सुन ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: ऑब्वियसली जनता को गाना तो ये पसंद आ रहा है, इस गाने से ज्यादा उनको गाने की कास्टिंग पसंद आ रही है। हर्ष नुसी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन अलॉन्ग विद दीप क्लेयर उनके लिरिक्स। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सिमरत कौर। नई नवेली एंट्री सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, किस्सा कहानी कुछ भी बताना हो, @RJKanika और इंस्टाग्राम पर आके क्विकली हिट मी अप। गाने शेयर करने से ज्यादा आपके सवाल मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। हर हफ्ते एटलीस्ट 10 लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे यार ये गाना नंबर 9 पे क्यों था, ये तो नंबर 4 पे होना चाहिए था या ये तो नंबर 1 पे होना चाहिए। सो आई वांट टू क्लियर इट वंस एंड अगेन दैट ये गानों की रैंकिंग मैं या मिर्ची बैठ के डिसाइड नहीं करते हैं, ये आप ही लोग डिसाइड करते हैं। आप ही जो प्यार देते हैं इन गानों को, हमारी टीम्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को देख के, आप कितनी बार सुन रहे हैं, आपके लाइक शेयर प्लेस को एनालाइज करके इन गानों की रैंकिंग बनती है। तो अल्टीमेटली यू आर द वन जो ये काउंटडाउन डिसाइड करते हैं। हर हफ्ते गाने आते हैं और गाने जाते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनका कोई ना कोई टेक अवे फैक्टर हमारे दिल में रह जाता है। कभी वो सिंगर की आवाज होती है, कभी वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट मुझे इंट्रो म्यूजिक लगता है कि पहले नोट से ही अंदाजा हो गया कि गाना कौन सा है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए, इट्स टाइम फॉर इंडी पॉप क्विज। मैं आपको एक गाने का आइकॉनिक इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। गाना भी बहुत आइकॉनिक है, सुन के बताओ कौन से वाला गाना है।

0: वही वाला गाना है जो आपको लग रहा है, लेफ्ट राइट वालों को नहीं, एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। शो पर आगे बढ़ती हो, ये पूरा गाना मैं आपके लिए प्ले करूंगी इन आर सेगमेंट कॉल्ड कैसेट क्लासिक, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जम करके अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Gana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi. Number 6.

0: आदित्य रिखारी की आवाज अलोंग विद कुटले खां रावटोर का म्यूजिक. गाने का नाम है ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. पूरे 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले एमसी स्क्वायर राधिका भिडे विकेट सनी का लॉन्ग वे फ्रॉम होम वॉज ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना हो बिंदास आके बताओ. इट्स टाइम फॉर अवर फेवरेट पार्ट ऑफ द शो. इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारा कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

यूफोरिया द बैंड का मायरी एंड आपके मैसेजेस प्यार ने मेरा और अशकाय का तो दिन बना दिया। इतनी सारी रिक्वेस्ट आई है इस गाने के बाद दैट आज वो गाना पिक करना कि हम कौन सा प्ले करने वाले हैं वाज अ डिफिकल्ट चॉइस एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू प्ले दिस वीक इज The one and only तेरा मेरा प्यार by कुमार सानू। ये गाना 2002 में रिलीज हुआ था एंड आज भी ऑलमोस्ट 24 साल बाद जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो इट स्टिल गिव्स मी दैट रश ऑफ फर्स्ट लव, पहली मुलाकात। आई स्वेयर एवरी टाइम आई यूज्ड टू लिसन टू दिस सॉन्ग मैं ना अपने आप में ब्लश कर रही होती थी कि बस कोई मेरे लिए ही गा रहा है ये गाना कि स्टॉप इट। एंड टिल डेट दिस सॉन्ग मेक्स मी फील लाइक दैट। This song gave us Nimrat Kaur, one of her earliest appearances, and that pink top that she's wearing in the video, मैंने अपनी मम्मी को इतना तंग किया था, ऐसा ही टॉप खरीदना है मुझे। What I love about this song is that there is love. कोई ऐसा अमीर बड़ी गाड़ी से निकलने वाला हीरो नहीं है, कोई ऐसे फैंसी लोकेशंस नहीं है, एक मूवी थिएटर है, so first eye contact, बस दो लोग, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी फ्लर्टिंग, दोस्त चिढ़ा रहे हैं, एवरीथिंग जो मेरे और आपके साथ कॉलेज में हुआ है या हम चाहते थे हुए, एंड इस सब को इनकैप्सुलेट करती है कुमार सानू की आवाज, व्हिच इज जस्ट नॉस्टैल्जिया का पीक। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए टू थिंक अबाउट योर ओल्ड क्रशेस दिस वीक ऑन कैसेट क्लासिक। दिस इज तेरा मेरा प्यार ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: डूड आई ऑलमोस्ट फील एम्बैरस्ड द वे दिस सॉन्ग मेक्स मी ब्लश. क्यों मतलब मेरे लिए कोई नहीं गा रहा है, बट है ऐसा ही है, मेन कैरेक्टर सिंड्रोम ही है ये. कुमार सानू की आवाज में दैट वाज तेरा मेरा प्यार, अ 2002 सॉन्ग ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. जितने सारे लोगों ने इसको रिक्वेस्ट किया, मैं नाम लेने बैठूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट है. थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस ऑफ दिस सॉन्ग अगेन. एट RJ करेगा ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. जो गाना आपको आज भी ऐसे गिडी गिडी फील कराता है फ्रॉम द 90s एंड 2000s, इंडी पॉप सॉन्ग, मुझे और अश्काय को आकर बताओ ऑन RJ कनिका, एंड वी विल फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की तरफ. संजू राठौर is back and how, this time with Bangles. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके Bangles is playing right next for you on गाना नंबर 5. You are listening to गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. Enjoy.
1: Number 5.

0: धुरंधर का आरी आरी इस हफ्ते नंबर 4 पर है और एक बात माननी पड़ेगी, बॉलीवुड को नॉस्टैल्जिया से बहुत प्यार है। पुराने गाने चाहिए, पुराने हुक्स चाहिए, पुरानी यादें चाहिए, बस पुराने सिंगर्स नहीं चाहिए। जरा सोचिए, धुरंधर में ये गाना जो आपने अभी सुना आरी आरी, वो है तम्मा तम्मा लोगे है, और साथ में है उदित जी की आवाज में ये वाला गाना। एंड देन हाल ही में यू ऑल्सो हर्ड है जवानी तो इश्क होना है का ये गाना कॉल्ड चुनरी चुनरी, जिसमें ओरिजिनल सिंगर अभिजीत नहीं है।
1: तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए।
0: एंड गेस व्हाट, अगला गाना काउंटडाउन पर है ऊंचा लंबा कद, एक और रिक्रिएशन। एंड मुझे रिक्रिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है, जिन आवाजों ने इन गानों को एवरग्रीन बनाया, फॉरएवर कूल बनाया, वो आवाजें आज कहाँ हैं? आनंद राज आनंद बेंच पर, अभिजीत भट्टाचार्य बेंच पर, उदित नारायण बेंच पर, रेयरली हर्ड, लेकिन उनके गाने हर दूसरे फ्राइडे को कमबैक कर रहे हैं। बॉलीवुड को गाना याद है, गाने वाला नहीं। और फिर पिछले हफ्ते संडे के दिन इत्तेफाक से एक वीडियो देखा और स्क्रीन पर आए अदनान सामी, और फिर वही गाना जिसके चलते अदनान से प्यार हो गया था।

मैन क्या आवाज है यार, क्या कंट्रोल है, क्या वॉर्म्थ है। सबसे बड़ी बात, द सॉन्ग मेक्स यू फील, द सॉन्ग गिव्स यू फील्स। और तब मुझे एक सवाल खटका, व्हाई इज अदनान सामी सिटिंग एट होम? सीरियसली, आज के कितने सिंगर्स हैं जो अदनान सामी के साथ एक स्टूडियो में खड़े होकर कंपीट कर सकते हैं? यार बहुत कम। बॉलीवुड का ये सच में अजीब लॉजिक है, पुरानी आवाजों की लेगेसी कैश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उन आवाजों को माइक्रोफोन नहीं देना है। खैर, जब तक सिंगर्स वापस नहीं आते, उनके गाने तो वापस आते ही रहेंगे, बॉलीवुड छोड़ेगा नहीं। और इस हफ्ते नंबर 3 पर है वेलकम टू द जंगल से आनंद राज आनंद साहब का ही गाना ऊंचा लंबा का और एवर। नंबर 3।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट Only on Mirchi. It's hot.
2: Number 2.

अशोका इस हफ्ते भी नंबर दो पर है यार। मुझे तो लगा था कि ये गाना सीधा नंबर वन तक पहुंच जाएगा इस बार, लेकिन एक बार हम बार बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इंडिया को उसके जासूस बहुत पसंद है और इस वक्त इंडिया का सबसे फेवरेट जासूस स्पाई है हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रांगी, और शायद इसलिए शरारत 19 हफ्ते बाद भी नंबर वन पर बैठा हुआ है। लेकिन स्पाइस की बात निकली है तो 3 जुलाई को दो नए स्पाइस इस लंबी कतार में जुड़ने वाले हैं, आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ। द फिल्म इज कॉल्ड अल्फा, और मुझे लगता है अल्फा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अल्फा खुद नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली धुरंधर है, क्योंकि धुरंधर के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस टोटली बदल चुकी हैं। अब ट्रेलर में सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ ग्लोब ट्रॉटिंग काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन एंट्रीज काफी नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली अल्फा का ट्रेलर देखकर मुझे बार बार लगा कि मैं कुछ नया नहीं देख रहा हूं, वही फेमिलियर ट्रोप्स, वही फॉर्मूला, वही टेम्पलेट। यस, बैकग्राउंड स्कोर के कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली इंप्रेसिव हैं, लेकिन जब एलीट असैसिंस की दुनिया में ऐसा डायलॉग आए कि वुल्फ की बेटी वुल्फ ही तो होती है, तो थ्रेट कम और टेलीविजन सीरियल ज्यादा लगने लगता है। एंड मे बी दैट्स व्हाई मैं अल्फा को अभी जज नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसे सिर्फ विश करना चाहता हूँ द वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पोस्ट धुरंधर दुनिया में सरवाइव करना आसान नहीं है। अरे यार, कम से कम ऋतिक रोशन को ही सरप्राइज रहने देते, ट्रेलर में पूरी फिल्म तो वैसी दिखा दी। खैर, जिस पाए ने वो बेंचमार्क सेट किया उसका राज अभी खत्म नहीं हुआ है। जैस्मिन सैंडलर्स और मधुबंती बागची, यालीना और हमजा की शादी वाला गाना दिस इज शरारत 19th week at number 1।

0: एक और हफ्ता खत्म, कुछ गाने चार्ट्स पर चढ़ गए, कुछ नीचे आ गए और होपफुली कुछ नए ऑब्सेशंस मिल गए। ये था मिर्ची टॉप 20 का लेटेस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक नॉइज को कम सुनिए, म्यूजिक को ज्यादा। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, it's hot.

Mirchi. It's hot. Mirchi, it's hot.

0: झूमेगाओ है रेला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी का मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो
1: अरे धूम धूम थिरके जा पाओ मैं जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो, नाचो।

Mitchie. It's hot.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसला और सुन रहे थे मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अब सुनते हैं मौसम का हालचाल। फिलहाल टेम्परेचर हो रहा है 66 डिग्रीज फारेनहाइट, क्लाउडी स्काइज के साथ है, लेकिन फील हो रहा है 68 डिग्रीज फारेनहाइट। यानी कि वेदर जो है वो उस दोस्त की तरह है जो कहता है यार मैं ठीक हूँ, लेकिन एक्चुअली ठीक नहीं होता है। गुड न्यूज ये है कि रेन का जीरो चांस है आज। पिछले 24 घंटों में भी जीरो रेन थी और अगले 24 घंटों में भी अम्ब्रेला को पेड लीव दी जा सकती है। सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक सनशाइन जो है फुल ऑन एंट्री मारने वाली है। देखो अभी दोपहर 1 बजे तक सनशाइन जो है फुल एंट्री मारने वाली है। सो अगर मॉर्निंग वॉक पर जाना है, कॉफी रन पे जाना है या फिर क्विक ग्रोसरी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये तुम्हारा वीआईपी विंडो है। लेकिन 1 बजे के बाद क्लाउड्स जो है वो फिर से थोड़ा सा कमबैक करने वाले हैं, कैमियो है उनका, और टेम्परेचर जो है मॉर्निंग में अराउंड 63 डिग्रीज फारेनहाइट रहने वाला है। फिर आफ्टरनून आते आते इट्स गोना जंप टू 87 डिग्रीज फारेनहाइट और फिर धीरे धीरे धीरे 89 डिग्रीज फारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। मतलब आज एसी और आइस्ड कॉफी की गहरी दोस्ती तुमसे होने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट हेड्स अप, वेडनेसडे के लिए एक्सट्रीम हीट वॉच इशू किया गया है। सो हाइड्रेट करते रहना, कम से कम 1 दिन में 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। साथ साथ में अपना SPF 50 प्लस प्लस प्लस सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। और अगर बाहर जाना जरूरी है तो कैप और वाटर बॉटल को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर ले जाना, नो कैप। ये याद रखो, फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो एक्चुअल नंबर से थोड़ा सा अलग है, यानी कि तुम्हें थोड़ा सा वार्म ज्यादा फील होने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेयर के प्लेयर बनो। और फिलहाल लेट मी प्ले सम मिर्ची दैट बैंगर्स फॉर यू। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम एंड एक्स प्रोफाइल्स। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। और जल्दी से व्हाट्सएप का नंबर भी बता दू, 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। दैट्स माई नंबर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग माय सनशाइन, मैं हूँ प्रिसला और चलो अब करते हैं सुपर फास्ट टाइम ट्रैवल विदाउट एनी पासपोर्ट एंड वीजा। 1613 में लंदन का फेमस ग्लोब थिएटर लिटरली वेंट अप इन स्मोक। शेक्सपियर का प्ले चल रहा था, कैनन चली और थिएटर ने कहा अच्छा चलता हूँ। फिर 1927 में ह्यूमंस प्रूव्ड कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सिर्फ लोग नहीं बल्कि एयरप्लेन्स भी कर सकते हैं। द फर्स्ट एवर ट्रांस पैसिफिक फ्लाइट सक्सेसफुली हवाई पहुंची। एंड 1964 में अमेरिका ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया, द सिविल राइट्स एक्ट सेनेट से पास हुआ। जंप टू 2007, दुनिया ने कलेक्टिवली बोला हेलो टच स्क्रीन। द फर्स्ट आईफोन वॉज लॉन्च और तब से हम फोन हमें ज्यादा यूज कर रहा है। और इंडिया में आज है नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे, सेलिब्रेटिंग लेजेंडरी स्टेटिस्टिशियन प्रसन्ता चंद्रा महालनोबिस। अब हिस्ट्री की क्लास खत्म और मिर्चीदार गानों की बौछार शुरू होने वाली है। मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ में। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड इन एंड कीप वाइबिंग विद मी, इट्स हॉट।

अच्छा टेल मी व्हाट्स वर्स देन फॉरगेटिंग योर वॉलेट एट होम, इट्स फॉरगेटिंग समवन्स नेम। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब टाइम है थोड़ी सी बॉलीवुड की गर्मा गर्म टी फैलाने का। सो हियर्स द स्कूप, अक्षय कुमार रिसेंटली कुडंट स्टॉप प्रेजिंग द ब्लॉकबस्टर सक्सेस ऑफ सैयारा, बट प्लॉट ट्विस्ट ये है कि जब फिल्म के लीड एक्टर्स के नाम लेने की बारी आई तो उनका मेमोरी कार्ड जो है वो बफरिंग मोड पर चला गया। इंस्टेड ऑफ सेइंग आहान पांडे एंड अनीत पड्डा, अक्षय simply call them the new boy and the new girl. अरे अक्षय सर, इतना भी न्यू मत करो कि आप ओल्ड साउंड करने लग जाओ। वैसे लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी इंपॉर्टेंट मौके पर कोई ना कोई चीज भूल गए हो। कभी कभी स्कूल के फ्रेंड्स के नाम याद नहीं आते हैं, कभी ऑफिस के किसी कॉलीग का नाम 3 बार पूछना पड़ता है, और जब फिर भी याद नहीं आता तो उसे हे करके बुलाना पड़ता है। डिफरेंस बस इतना है कि हमारा मोमेंट फैमिली, व्हाट्सएप, ऑफिस, कॉलीग, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक ही रह जाता है। लेकिन अगर मैं सेलिब्रिटी होती तो ये मोमेंट मेरा भी इंटरनेट पर वायरल हो जाता, जैसे कि अक्षय कुमार का हो गया। लेसन ऑफ द डे ये है कि प्रेज करो तो दिल से करो और नाम लेकर करो। तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है बताओ मुझे। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रेस, डीएम कर सकते हो मुझे तुम डायरेक्टली MIRCHIPRIS पर, या फिर व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स चलाती हूँ तुम्हारे लिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, दिस इज प्रिसिला एंड यू ऑफिशियली एंटर्ड द नो बोरिंग जोन यानी कि मिर्ची मॉर्निंग्स। वेलकम है जी। यहाँ पर कॉफी जो है वो गर्म है, गॉसिप जो है वो गर्मा गर्म है और एनर्जी जो है वो सुपर गर्म है। अभी वेदर यू आर ड्राइविंग टू वर्क, पैकिंग द किड्स लंचेस या फिर प्रिटेंड कर रहे हो वर्क फ्रॉम होम करने का व्हाइल यू आर स्टिल इन योर पजामास, डोंट यू वरी, हमारा सीक्रेट जो है वो सेफ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे साथ ही रखना फॉर नेक्स्ट लिटिल व्हाइल। वी आर गोइंग टू मेक ट्रैफिक फील शॉर्टर, मीटिंग्स फील सर्वाइवेबल एंड होम सिकनेस को थोड़ा सा हॉलीडे मोड पर भेज देंगे एंड एक्सपेक्ट बॉलीवुड के मिर्चीदार बैंगर्स, मस्ती, नॉस्टैल्जिया, गुड वाइब्स एंड ऑफ कोर्स वो रैंडम कॉन्वर्सेशन जो सिर्फ और सिर्फ देसी लोग ही समझ सकते हैं। साथ साथ में तुम्हें अराउंड द वर्ल्ड की खबरें भी मिलने वाली है, न्यूज अपडेट्स मिलने वाला है एंड बहुत सारी और बातें करने वाले हैं। अब सब कुछ यही बता दूं क्या? फिलहाल फटाफट से जाओ मुझे इंस्टाग्राम पर और एक्स पर फॉलो करो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, That is MIRCHIPRIS। और अभी मिर्चीदार बैंगर्स चलाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। मेरा नाम है प्रिसिला, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मेरा नाम है प्रिसिला एंड दिस इज मिर्ची आवा का 3 ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोरान ममदानी ऑफिशियली किक्ड ऑफ आउटडोर पूल सीजन बाय जंपिंग इनटू द पूल वेयरिंग अ बिजनेस सूट। टर्न्स आउट दैट डजंट एक्चुअली मैच द पार्क्स डिपार्टमेंट्स ड्रेस कोड एंड हिज रिस्पांस व्हेन दे सेड वेयर अ सूट आई जस्ट अज्यूम्ड सेफ टू से ही टुक द ड्रेस कोड अ लिटिल टू लिटरली। एंड नंबर 2 पर फ्रॉम इंडिया स्पूने इन द इन्वेस्टिगेशन इनटू केतन अग्रवाल्स मर्डर पुलिस से एन अक्यूज्ड अलेजेडली स्टेड ऑफ मोबाइल इंटरनेट for nearly 10 hours, apparently trying to avoid digital tracking. Investigators say that unusual offline gap has itself become an important part of piecing together the timeline. The investigation is still ongoing. And number 3, for a more serious update, Pakistan carried out overnight strikes in Afghanistan. Afghan officials say civilians, including women and children, were killed or injured. Pakistan says the strikes targeted militants following a recent attack in Karachi. As always, with developing international situations, details continue to emerge. And our thoughts are with all innocent civilians affected. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Mera naam hai Prisila. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. And WhatsApp par number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब थोड़ी सी स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स ने ऐसा माइक ड्रॉप मोमेंट दिया है कि क्रिकेट फैंस जो है ना उसे अभी तक रिप्ले करके देखते जा रहे हैं। सीन इमेजिन करो कि ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में क्राउड को अनाउंस किया गया कि स्टोक्स जो है रिटायरमेंट लेने वाले हैं। पूरा स्टेडियम जो है वो खड़ा हो गया, स्टैंडिंग ओवेशन, क्लैप्स, इमोशंस एंड फुल ऑन बॉलीवुड के क्लाइमैक्स की तरह सीन हो गया। और बस उससे मेयर 27 सेकंड्स के बाद, हां जी सिर्फ 27 सेकंड्स के बाद, मिस्टर बेन स्टोक्स सेड इमोशनल, बाद में होना, पहले मुझे विकेट लेने दो। उन्होंने जैक फोक्स को आउट कर दिया, एज गया सेकंड स्लिप और हैरी ब्रूक ने कैच पकड़ लिया। ग्राउंड का इमोशन जो है सीधा सेलिब्रेशन मोड में कन्वर्ट हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी कभी बेस्ट रिप्लाई वर्ड्स नहीं बल्कि परफॉर्मेंस होता है, यानी कि तुम्हारे वर्ड्स से ज्यादा तुम्हारे एक्शंस काम करके दिखाते हैं। और स्टोक्स जो है उन्होंने वो रिप्लाई सिर्फ और सिर्फ 27 सेकंड्स में दे दिया है। मतलब इन शॉर्ट मैं तो ये कहूंगी कि बेन स्टोक्स क्या सीन था यार। कसम से अभी फिलहाल जाकर मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मॉर्निंग माय बर्थडे बेबीज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। अगर आज यानी कि 29th ऑफ जून को तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो मिर्ची फैमिली की तरफ से तुमको एक झकास हैप्पी बर्थडे। एंड गेस व्हाट, आज तुम्हारे साथ कुछ आइकॉनिक लोगों का भी हैप्पी वाला बर्थडे है। लेट्स फाइंड आउट हु दे आर। सबसे पहले, यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे विद कॉमेडियन कॉलिन जॉस्ट एंड एक्ट्रेस कमिला मेंडिस। स्पोर्ट्स फैन NBA सुपरस्टार क्वाही लेनर्ड भी आज ही के दिन इस धरती पर आए थे। डांस लवर एडम सिवानी फ्रॉम द स्टेप अप मूवीज भी 29th ऑफ जून के बेबी है। और रेडियो लवर्स के लिए लेजेंडरी रेडियो पर्सनैलिटी शालोमन द गॉड का भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। और बर्थडे का रूल नंबर 1 होता है कैलोरीज डोंट काउंट। रूल नंबर 2 होता है अगर किसी ने पूछा कितने साल के हो गए तो कॉन्फिडेंटली बोलो ओल्ड इनफ टू नो बेटर एंड यंग इनफ टू स्टिल डांस व्हेन माय फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग Come on. And अभी मिर्ची मॉर्निंग्स पर आने वाले तुम्हारे फेवरेट बॉलीवुड बैंगर्स मेरे आने की प्रिसिला के साथ बने रहो। और इंस्टा और एक्स पर मुझे फॉलो भी कर लो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: देयर, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। रब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,200, $4,200 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से अपवर्ड ट्रेंड ऊपर चले गए हैं, और इससे पहले और ऊपर जाएं, आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें, जिसमें 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। आप आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी के, और 9 months में इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं। आइए मिलके इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में विद द टीम ऑफ rajjewels.com। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
0: एंड देयर यू गो, गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट तो तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन क्या तुम्हें पता है मुझसे इंस्टाग्राम और एक्स पे तुम बातें कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट करने के लिए 9033 मिर्ची इज द नंबर, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: कि मैं गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शार्क कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे ऐसे मस का लगा। रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा मेरा।
1: Hey you, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ and this is Mirchi Hour के 3 on Mirchi Mornings. सबसे पहले अ स्टोरी ऑफ होप फ्रॉम वेनेजुएला। रेस्क्यूअर्स पुल्ड अ फादर एंड हिज सन अलाइव फ्रॉम द रबल 96 आवर्स आफ्टर पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्रक। दे वर फाउंड इन द बैडली अफेक्टेड प्रोविंस ऑफ लागुआयरा। सैडली अथॉरिटीज से द डिजास्टर हैज क्लेम्ड मेनी लाइव्स विद थाउजेंड्स स्टिल अनअकाउंटेड फॉर। And number two, per this one's heartbreaking, investigators in the US say they found the remains of 117 dogs at a shelter that described itself as a no-kill facility. The investigation is ongoing and authorities are working to determine exactly what happened. Animal lovers everywhere are understandably shocked and hoping the truth comes out. And finally, back in India, investigators looking into the alleged Ram Temple donation theft are examining reports that some suspects saw a dramatic increase in their wealth over a short period. Separately, the Ayodhya Bar Association has announced that members who choose to represent the accused could face internal penalties under the association's resolution. The investigation is continuing and no court has determined guilt. And that's it for Mirchi Hour Ka 3. Main hoon Prisila tumhare saath. Main sun rahi hoon Mirchi Mornings. Connect with me. Insta or X par mera handle hai Mirchi Pris and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 6 4 7 2 double 4. Stay tuned and stay hot.

0: रेज योर हैंड अगर जानना है तुम्हें कि सितारे तुम्हारे बारे में आज क्या बोल रहे हैं। मैं वो प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज राशि जोन का पहला पार्ट।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: एरीज यानी कि मेष राशि, आज लास्ट मिनट हीरो मत बनो, थोड़ी सी प्लानिंग आज तुमको कल की टेंशन से बचा सकती है। लकी कलर इज स्कारलेट, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, दिल की बात ऑनेस्टली बोलो, तुम्हारी सिंसियरिटी ही आज तुम्हारा बिगेस्ट सुपर पावर बनेगी, टीम भी बोलेगी वी आर विद यू। लकी कलर इज ग्रीन, लकी नंबर इज 22। जेमिनी यानी मिथुन राशि, पैसों को लेकर स्ट्रेस हो सकता है लेकिन सोल्यूशन भी साथ ही आ रहा है, ट्रस्ट द प्रोसेस बेबी, और अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग से थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा इतू सा। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, सबको कन्विंस करना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी पॉज का बटन भी लाइफ का बटन बन जाता है, थोड़ा सुन भी लो, सिर्फ बोलते मत रहो। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 18। लियो यानी कि सिंह राशि, अगर आज थोड़ा सा स्लो लग रहा है डोंट यू वरी, ये बस इंटरवल है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिग एनर्जी इज लोडिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लकी कलर इज येलो, लकी नंबर इज 1। वर्को यानी कन्या राशि, कॉन्फिडेंस ऑसम है, ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेस ऑसम होता है, आज स्मार्ट मूव से खेलो, सुपर हीरो मोड भी ऑन कर सकते हो लेकिन बी अ लिटिल लेस कॉन्फिडेंट। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 30। और अब बाकी बचे 6 राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में, तब तक तुम जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी चलाते मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: आज का मिलियन डॉलर क्वेश्चन, आज का दिन कैसा जाने वाला है? मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में राशि जोन पार्ट टू लेकर आ चुकी हूँ। लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी कि तुला राशि, ड्रामा मैग्नेट लोग आज तुम्हारे आसपास हो सकते हैं। रिमोट कंट्रोल नहीं है तो एटलीस्ट अपनी अटेंशन का वॉल्यूम जो है वो कम करो। लकी कलर इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, परफेक्शन अच्छी बात होती है, ऑब्सेशन बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। आज खुद पे थोड़ा सा इजी रहो, प्रोग्रेस भी सेलिब्रेशन डिजर्व करता है। लकी कलर इज मरून, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, दिल बड़ा रखो यार, लेकिन वॉलेट पर सिक्योरिटी गार्ड को भी बिठा कर रखो। आज खर्च करने से पहले 20 बार सोच लेना। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 27। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, इमोशंस को प्रेशर कुकर मत बनाओ जी, जो फील कर रहे हो कामली एक्सप्रेस करो। आज ऑनेस्टी इज योर बेस्ट थेरेपी। लकी कलर इज ग्रे, लकी नंबर इज 16। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज अगर सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, रिलैक्स मेरी जान, हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है और हर मिस्ट्री सॉल्व करना तुम्हारा काम नहीं है। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 33। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन, क्रिएटिविटी फुल पावर में है, बस जेलस लोगों की बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा म्यूट दबा दो। आज अपनी स्टोरी का हीरो सिर्फ तुम और सिर्फ तुम हो। लकी कलर इज आक्वा, लकी नंबर इज 9। एंड दैट्स द एंड ऑफ राशि जोन पार्ट द्वितीय। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट करना चाहते हो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फॉर कनेक्शन, फीडबैक और क्वेश्चंस यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर। अभी फिलहाल मिर्ची दार बैंगर्स चलाते तुम्हारे लिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

और बस दोस्त, आज की मिर्ची मॉर्निंग्स की सुबह यहाँ पर रैप अप होने वाली है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। ऑफ कोर्स जाने से पहले तुम्हें एक फील गुड स्टोरी जरूर सुनाकर जाऊंगी। यूरोप में हीट वेव ने लोगों का एसी से इमोशनल अटैचमेंट और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। जर्मनी में टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है और रात को भी गर्मी लोगों को चैन से सोने नहीं देती है। मुझे इंडिया का नॉस्टैल्जिया हो रहा है। लेकिन बर्लिन पुलिस ने एक मस्त आइडिया निकाला है। जो वाटर स्प्रेइंग ट्रक्स नॉर्मली प्रोटेस्ट हैंडल करने के लिए यूज होते हैं, उन्हें इस बार लोगों को ठंडा करने के लिए सड़कों पर उतार दिया गया है। सोचो जरा, लोग लाइन लगाकर खुद कह रहे हैं, ऑफिसर इधर भी एक शावर प्लीज। अब ये हुई ना पब्लिक सर्विस विद अ स्प्लैश वाली बात। और अच्छी बात ये है कि अगले कुछ दिनों में बारिश की भी उम्मीद है, तो होपफुली वेदर जो है वो थोड़ा सा चिल मोड में आ जाएगा। वैसे तुम अपने आप को इस हीट में हाइड्रेटेड रखना, सनस्क्रीन लगाना और अगर चाय पीनी है तो एसी के नीचे बैठकर पीना, क्योंकि ये जर्मनी नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे ऊपर पानी की बौछार नहीं होने वाली। और वैसे ये इंडिया भी नहीं है जहाँ पर प्रोटेस्ट्स के ऊपर पानी की बौछार हो जाती है। और ऐसी बात पर मैं तुम्हें टाटा बाय बाय कहती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी बकबक तुम्हें पसंद आती है, मॉर्निंग की मस्ती पसंद आती है, तो फटाफट से जाओ मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। हाँ, मेरा ये हैंडल है। और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर भी लिख लो, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244। मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। किंज करा तारीफ तेरे चेहरे दी, किंज करा तारीफ तेरे।

0: Itchy. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना।

0: क्या बचपन में आप भी इस बात से कन्विंस थे कि अगर हमने तरबूज का बीज खा लिया तो हमारे पेट में पेड़ उग जाएगा?
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और बचपन के कुछ ऐसे मिथ्स रहे हैं जो आज गूगल बाबा क्लियर करते करते थक जाते होंगे, क्योंकि इस मिथ की रियलिटी पता लगे मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है बॉस, कि बीज खाने से पेट में कोई पेड़ नहीं उग जाता है। पूरा बचपन मैंने इस डर को सच माना था यार, और बड़े होते होते तो पता लगा कि यार वाटरमेलन के बीज तो उल्टा और अच्छे होते हैं, खाने चाहिए। बट ये एक लौता ऐसा मिथ नहीं था जिसे कि हम फॉलो किया करते थे और जिससे हम डरा करते थे। ऐसे और भी कई मिथ्स हैं जिनकी छांव में हमारा बचपन गुजरा है, और मैंने सोचा कि क्यों ना आज इन मिथ्स और कहानियों से पर्दा उठाया जाए। क्या बोलते हो? तो चलो फिर मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ और आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: है सांबा, जिंदगी की बरसात है, आज रात है, टाइम पास है।
1: क्या कभी आपने भी घर के कलेश को उल्टी चप्पल से जोड़ने की कोशिश की है?
2: सारा जमाना सारा का दीवाना।
3: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज बचपन के 90s के वो मिथ्स जो हमने जिए हैं और आज तक जीते आ रहे थे, उन्हें मिटाने की मेरी पूरी कोशिश है। ये जो चप्पल है ना, इस चप्पल से हमारी पिटाई होती थी, ये तो डायरेक्ट कनेक्शन था। लेकिन घर के कलेश से इसका कैसे कनेक्शन था ना, ये तो आज तक नहीं समझ में आया है। जहाँ कहीं उल्टी चप्पल पड़ी होती थी ना, दिल में एक अजीब सा डर होता था कि ओह नो, ये चप्पल आज फिर घर में लड़ाई ना करवा दे। बट जस्ट इमेजिन, लोगों की करनी उनके डिफरेंसेस को हमारे बड़े बोलते थे, जाओ तेल लेकर आओ, और सारा दोष एक उल्टी चप्पल पर जाता था कि इसकी वजह से लड़ाई हुई है। आप वैसे उल्टी चप्पल वाले आइडिया से बाहर आ गए हो या खानदानी रियासत की तरह इसे भी अगली जनरेशन को ट्रांसफर कर रहे हो? हाँ, चूज योर राइट। हाँ, मार्केट में बहुत सारे राइट्स हैं। और फिलहाल के लिए तो मिड डे मोहब्बत यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इज हॉट।

0: घर में कभी न शाम पड़े झाड़ू दिली थी और न आज दिल दिए।
1: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये ट्रॉमा आज भी हैंगओवर की तरह लटक रहा है कि शाम को झाड़ू नहीं देते। सो मच सो दैट कि मुझे पता है कि इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है, लेकिन आज भी अगर मैं शाम को झाड़ू लगा देती हूँ ना, तो अजीब अजीब से ख्याल आने लग जाते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। अच्छी खासी मैं इंसान बैठे बैठे ना एकता कपूर की फीमेल लीड के बराबर टेंशन लेने लग जाती हूँ कि हे भगवान, मंदिर का दिया बुझ गया, ये तो अपशगुन हो गया। जबकि लॉजिक तो ये है कि बड़े बूढ़े एक जमाने में ना शाम को घर की सफाई करने से इसीलिए मना किया करते थे क्योंकि पहले ना हर घर में सनसेट के बाद बिजली नहीं होती थी और डर ये होता था कि अगर घर की कोई कीमती चीज कचरे में चली गई ना तो बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए सीधा मना ही कर दिया करते थे। डीएम करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड लेट मी नो क्या आप आज भी इस बात को फॉलो करते हो। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मेरे घर में तो क्या, घर के बाहर भी काला कुत्ता नहीं था, फिर भी मैं बचपन में इस मिथ में बड़ा यकीन किया करती थी।
2: सारा ज़माना है सारा का दीवाना।
3: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और हम बच्चे आपस में जाने क्यों इस पैक्ट को मान लिया करते थे कि अगर सर एक बार गलती से टकराया ना, तो एक बार जानबूझकर और टकराना पड़ेगा, वरना काला कुत्ता मुंह चाट लेगा। विच नाउ टू मी इज क्यूट, क्योंकि आई लव डॉग्स एंड ब्लैक इज ब्यूटीफुल। बट आज तक मैंने इस गुत्थी को नहीं समझा कि एक ऐसा डर था यार, जाने ये क्या ट्रेंड था हम मिलेनियल्स के बचपन में, जो हमें इतने उलझल उल मिथ्स कन्विंसिंग बताए जाते थे। आपके बचपन के कौन कौन से ऐसे मिथ्स हैं जिनको सुनकर आप बड़े हुए हो? DM करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: भले ही अंजाम फिल्म में SRK वॉज द विलन, लेकिन इस गाने में ना मेरा बड़ा दिल टूट रहा था यार, कि यार शाहरुख जो है वो मनाए जा रहा है माधुरी को, माधुरी मान क्यों नहीं रही है यार? आफ्टर ऑल हीरो तो शाहरुख ही है। मतलब मैं शाहरुख की इतनी बड़ी फैन थी ना कि ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि शाहरुख भी विलन हो सकता है। सो मच सो दैट बाय द एंड ऑफ द मूवी आई डिड नॉट फील बैड अबाउट एनीवन एल्स एक्सेप्ट फॉर शाहरुख खान, व्हेन आई वाज लाइक ओ नो ये तो व्हीलचेयर पर आ गया। इसीलिए कहते हैं प्यार अंधा होता है।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड नाउ मेरे यारा बारी है मान ना मान करो गानों की पहचान की। देखो प्यार अंधा होता है लेकिन कान तो खुले हुए होते हैं, तो बस फिर गौर से सुनो इन दो धुनों को जो मैं आपके लिए चलाने जा रही हूँ। और आपको इन धुनों को सुन के पहचानना है कि ये जो मिक्स की गई है, ये मिक्स करने के बाद दो अलग अलग जब की जाए तो कौन कौन से दो गाने निकल कर आए।

ओके डोकी, नाउ बस इतना सा काम करना है, डीएम करना है ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेज दो और स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हड्डियां चटकाने से हड्डियां वीक होती हैं, ट्रू या फॉल्स?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। आई नो ये आज भी ट्रू माना जाता है, बट गेस व्हाट, इट इज फॉल्स। अरे ये सिर्फ बचपन का मिथ है यार, ऐसा कुछ नहीं होता था। इनफैक्ट उंगलियां चटकाने के बाद तो कितना सुकून मिलता है, और वो जो आवाज आती है ना, दैट बेसिकली इज नॉट आवर बोन्स, मगर उंगलियों के जॉइंट्स के वैक्यूम में ना गैस इकट्ठी होती है, तो वो जो नकल क्रैक आता है ना, वो आवाज तभी निकलती है जब हम अपनी उंगलियों को दबाते हैं। सोचा ना था कि एक दिन मैं टीचर बन जाऊंगी, और वो भी बायोलॉजी के सब्जेक्ट की। बट एज अ किड मैंने कोई भी हरकत करी हो, कैसी भी हरकत करी हो, लेकिन एज एन अडल्ट ना, आई लाइक टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एनाटॉमी बेटर। तो ये जितने भी मिथ्स है ना, ये इधर उधर हो जाते हैं इसके चलते। आपके बचपन की कौन कौन सी ऐसी कहानियां रही हैं जिनको कि आपने आज तक भी सच माना था, और रिसेंटली आपको पता लगा कि आई ऐसा तो होता ही नहीं है? डीएम करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: क्यों भाई, चाय पीने से काले हो जाते हैं है?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, बचपन में हमें यही कहा जाया करता था कि चाय पियोगे तो काले हो जाओगे, विच नाउ इज समथिंग जिससे कि मैं रिलेट ही नहीं कर सकती, क्योंकि यार जिसका जो रंग है वो वैसा ही पैदा हुआ है, उसको कोई चेंज थोड़ी कर सकता है, ना ही कोई फेयरनेस क्रीम और ना ही चाय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, बड़े तो हमारे हमें रोकते थे, टोकते थे इस वजह से, क्योंकि यार चाय इज बेसिकली कैफीन और बच्चों का कैफीन से क्या लेना देना यार। बट उस रोक टोक में ये एक नया मिथ शुरू हो गया था कि चाय पीने से काले हो जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि जितने भी बड़े हैं वो काले क्यों नहीं हुए, हम बच्चे ही क्यों काले होने वाले थे चाय पीने से यार। और ये एक ऐसा मिथ है हमारे बचपन का जिसको कि लेकर हम बच्चों में इतनी चर्चा रहा करती थी, बाप रे बाप, कि अगर गर्मियों की छुट्टियों में खेलने के बाद भी टैन हुआ है ना, तो भी हम कहते थे तूने चाय पी होगी तभी तो इतनी काली हो गई। एंड गॉड नोज हमारा क्या ये जज्बा हुआ करता था कि हमें गोरा ही रहना है और काला नहीं होना है और रंग हल्का नहीं होना चाहिए, कि वी यूज्ड टू बी स्केयर्ड ऑफ ड्रिंकिंग चाय। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार गोरे हो चाहे काले हो, जैसे भी हो, बस मतवाले हो। आपके बचपन की ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो आपने सुनी और सुनते सुनते बड़े हुए और फिर आपको पता लगा कि आईला ये तो सच है ही नहीं। डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बस तुम रहते हो।
1: नाइनटी एट पॉइंट थ्री मिर्ची, इट्स हॉट।

0: च्युइंगम निगली ना तो सालों तक पेट में चिपकी रहेगी, ऐसा सुना था मैंने बचपन में।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का फिटारा। और च्युइंगम खाना पाप था हमारे लिए, और हो भी क्यों ना यार, मतलब आज अगर मैं अपना बचपन देखूं और मैं ये मानूं कि मैं अपने बचपन में बड़ी हूं कोई, तो भाई मैं भी मना कर दूंगी अपने आप को कि नहीं नहीं नहीं च्युइंगम नहीं खाते हैं। क्योंकि यार हम च्युइंगम खाते थे और उसके बाद उसे डस्टबिन में डालने के बजाय कुर्सी के नीचे, बेड के सिरहाने के पीछे या सोफे के इधर उधर चिपका देते थे। याद नहीं आ रहा है यार, लेकिन इस आलस की वजह थी क्या? But there used to be instances कि हम च्युइंगम्स गलती से निगल भी लिया करते थे। अब बेचारे हमारे पेरेंट्स कहाँ तक निगरानी रखते हम पर, उन्होंने हमें ये बताना शुरू कर दिया कि बेटा च्युइंगम खाओगे ना तो सालों तक पेट में चिपकी रहेगी। और हम तो गूगल बेबीज नहीं थे ना यार, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही हमारे गूगल होते थे, और उन्होंने जो बोला वो 100% सच। मजाल है कि ये बात जानने के बाद किसी भी बच्चे ने च्युइंगम गलती से भी निगली हो। मुझे याद है मेरी एक कजन ने गलती से निगल ली थी, और वो जो रोते रोते अपनी मम्मी के पास गई कि मम्मी मैंने च्युइंगम निगल ली। हाँ, लेकिन फर्नीचर और दीवारों पर च्युइंगम चिपकाने वाली हरकतें हमारी बड़े होते होते ही गई, उससे पहले कते नहीं गई। You tune in with me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: शंकर महादेवन की आवाज एंड शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक, दिल चाहता है का ये गाना इज कैसेट के साइड वी का तीसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट,
1: द टाइटल ट्रैक, और कौन सा गाना यार, माय गॉड। मतलब इस गाने की खास बात पता है क्या है कि ये गाना जो है ये बीते कल का ही गाना है। मतलब जो गाना इतनी शिद्दत से कह रहा है कि दिल चाहता है कि कभी ना बीते चमकीले दिन। सैडली आज भी जब ये गाना हम प्रेजेंट में गुनगुना रहे होते हैं ना, तो दिल में एक अजीब सी कसक होती है कि यार ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमारा बचपन, हमारे कॉलेज डेज सब पास्ट में चले गए हैं। और जब तब ये गाना सुना करते थे ना, तो लगता था कि हाँ गाना ही तो है। बट इसके मायने तब समझ में आए जब धीरे धीरे करके ना बचपन हमारे हाथों से छूटता गया, स्कूल छूटता गया, फिर कॉलेज छूटता गया, फिर नौकरी शुरू हो गई, और जब से नौकरी शुरू हुई है तब से लाइफ एक जैसी सी लगती है। बट वाकई में यार वो जो दिन थे वो ऐसे ही थे जहां पर जगमगाते थे, झिलमिलाते थे अपने रास्ते, और हमारे दिल में भाई इतना जज्बा था ना, ऐसा लगता था कि भाई पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, बोलो तुम क्या करना है, हम करके दिखाएंगे। और तभी हम गा दिया करते थे कि ये खुशी रहे, रोशनी रहे अपने वास्ते। हाय कितने नादान थे नहीं हम। बट इस गाने की सबसे प्यारी लाइन पता है क्या है, वो ये है कि कैसा अजब ये सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है, उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए, इसीलिए जो आज है ना उसको जी लो। क्योंकि बचपन में भी हम बड़े ही होना चाहते थे, और बड़े होने के बाद भी हमें यही लगता है कि अभी और बड़े हो जाए, अभी और कुछ कर ले फिर खुश हो जाए। नहीं यार, जो है वो अभी है, कल का क्या होगा कल पे छोड़ दो, और अभी जाते जाते यही गाना सुनते हुए जाओ। मैं आपके लिए यही गाना लगाते हुए जाती हूँ, और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार की, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और बाकी यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: hot.
1: Mirchi, it's hot.
2: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.
3: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गुलाम मोहम्मद कासिर नाम के शायर हैं, उनका ये शेर है। और आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो बढ़िया सी स्माइल दीजिए, उसके बाद ये जो हम गाना सुनने वाले हैं नाइट इन लंदन का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज में, इस गाने का वीडियो देखिए। अगर आपको 60s वाला लंदन देखना है, बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। इनफैक्ट जब मोहम्मद रफी साहब इस गाने की शुरुआत करते हैं ना ओ माई लव से, उससे पहले जो गिटार बज रहा है वो इस गाने के वीडियो में एक नाव पे बैठा गोरा बजा रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्च।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3
0: मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: पुरानी फिल्में जिनकी शूटिंग अब्रॉड में हुई है उनमें से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली शॉर्ट फिल्म्स इज इवनिंग इन पेरिस। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड द क्रेडिट गोज टू फिल्म के सिनेमाटोग्राफर गोपी कृष्ण। डायरेक्टर शक्ति सामंता को भी क्रेडिट जाता है। इनफैक्ट ये ना सुनने में आता है कि पेरिस में इस फिल्म की शूटिंग के लिए शक्ति सामंता सिर्फ 10 लोगों को लेके गए थे, क्योंकि तब पेरिस जाके शूटिंग करना बहुत बड़ी बात होती थी भाई। और ये भी सुनने में आता है कि जो जो लोग इस यूनिट में शामिल थे ना 10 लोग, उनको जो पेमेंट की गई थी वो काफी कम थी। क्या पेरिस घुमा दिया ना, पैसे काय को मांग रहे हो। अच्छा, इसका जो टाइटल ट्रैक है ना, एन इवनिंग इन पेरिस, ये फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स का सॉन्ग है। तो कई लोगों के साथ उस टाइम ऐसा हुआ कि जो थिएटर लेट पहुंचे उन्होंने गाना मिस कर दिया, तो उन्होंने दोबारा से मूवी देखी वो गाना देखने के लिए। मस्त पेरिस की गोरियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं शम्मी कपूर साहब इस गाने में। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: अजी ऐसा

0: Mirchi. It's hot.
1: Purani Jeans with Charu, only on

अफ्रीका में हिंद, ये एक फिल्म का नाम है, आपको पता है? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1939 की ये फिल्म है जिसकी शूटिंग अफ्रीका में हुई थी। तो वैसे अगर आप सोचें तो बाहर अब्रॉड में शूट होने वाली पहली फिल्म इसको माना जाएगा, हिंदी फिल्म की मैं बात कर रही हूँ। फिर 1954 की एक फिल्म नाज भी थी जिसकी शूटिंग अब्रॉड हुई थी, लेकिन जो फिल्म जिसकी शूटिंग एक्सटेंसिवली अब्रॉड हुई थी, यूरोप में हुई थी, वो थी संगम। फिर जिसने बाद में ट्रेंड भी चलाया था बाहर जाके फिल्में शूट करने का, या यू नो वो वाली फिल्में जो आई थी, एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंडन, लव इन टोक्यो। इनफैक्ट लव इन टोक्यो में ना आशा पारेख जी ने कुछ हेयर क्लिप्स यूज की थी, उनको बाद में लव इन टोक्यो हेयर क्लिप्स नाम से जाना जाता था। और इस फिल्म के इस गाने के ऑडियो में जापान का फ्लेवर तो है ही, इसके वीडियो में भी है। यस, इसके वीडियो में आपको 1960s का टोक्यो जापान देखने को मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, ऑन मिर्ची।

मिड और लेट 60s में ऐसी काफी मूवीज आई थी जो अब्रॉड शूट हुई थी और उनके टाइटल में भी बाहर की सिटीज का नाम था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जैसे लव इन टोक्यो, एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंदन, और ये ट्रेंड एक्चुअली जिस फिल्म ने शुरू किया था ना उसके नाम में किसी बाहर के शहर का नाम नहीं था, लेकिन इसकी शूटिंग काफी एक्सटेंसिवली यूरोप में हुई थी। दिस मूवी वॉज संगम, मतलब 1964 की फिल्म में दिखाया जा रहा है कि कपल अपने हनीमून के लिए यूरोप जा रहा है, क्या बात है। पर अभी जो हम इसका गाना सुनने वाले हैं वो तो अपना यही ऊटी में ही शूट हुआ था। दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग रिटन बाय हसरत जयपुरी, कंपोज्ड बाय शंकर जयकिशन, मोहम्मद रफी की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। पर ये गुल जो खिले थे ये कौन से गुल थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये ट्यूलिप्स हैं। तो इस गाने के कुछ हिस्सों की शूटिंग नेदरलैंड्स के लिस्सा शहर के केओकेनहॉफ गार्डन्स में हुई थी ना, जहाँ के ट्यूलिप्स दिखाए गए हैं। भाई दुनिया का ये बहुत ही बड़ा बगीचा है, 32 हेक्टेयर के एरिया में, और कुछ 7 मिलियन फूल यहाँ पे उगाए जाते हैं। इस जगह पे शूट करने का सजेशन यश चोपड़ा साहब को खुद अमिताभ बच्चन साहब ने दिया था, बिकॉज शूट से 1 महीना पहले ही वो वहाँ पे घूम के आए थे। क्या बात है भाई, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बगीचे। इसी बात पे सुंदर सा गाना सुन लेते हैं यहाँ पे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ।

पुरानी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग डायनामिक वाइब्रेंट मेन फिरोज खान साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बंदे ने हिंदी फिल्मों में फॉर्मूला 1 कार रेसिंग इंट्रोड्यूस की थी 1972 की फिल्म अपराध में। जर्मनी में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी और बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि द फर्स्ट फिल्म टू गेट शॉट इन अफगानिस्तान वाज खुदा गवाह। नो नो नो नो नो, पहली हिंदी फिल्म जो अफगानिस्तान में शूट हुई थी वो थी 1974-75 की धर्मात्मा। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी जी अफगानिस्तान में बहुत पॉपुलर हो गई थी। उनकी एक झलक पाने के लिए अफगानिस्तान का पटा आने सा तरसता था। वो वैसे इतनी सुंदर थी यार, ऊपर से उनका जो एक कैरेक्टर दिखाया गया था रेशमा इस फिल्म में, वो अलग ही गजब धारा था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans. With Charu, only on Mirchi.

पुरानी फिल्में और गाने जो फॉरेन लोकेशंस पे शूट हुए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सो 1970 की पूरब और पश्चिम फिल्म का गाना कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, पिक्चराइज्ड डॉन मनोज कुमार एंड सायरा बानू। ये आपको पता है इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शूट हुआ था। अनदर फिल्म 1970 की प्रेम पुजारी, जो कि देवानंद साहब की फर्स्ट फिल्म एज डायरेक्टर थी, उसका गाना फूलों के रंग से वॉज शॉट इन स्विट्जरलैंड। इनफैक्ट आप जब ये गाना देखो तो उसमें बैकग्राउंड में स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही फेमस होटल ग्रिम्सल होटल भी आपको देखने को मिलता है। फिलहाल तो यहाँ पे ये गाना ही मिल सकता है सुनने को। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन

भाई वैसे तो हिंदी फिल्मों में एक्सटेंसिवली फॉरेन लोकेशंस पे शूट करने का ट्रेंड संगम फिल्म ने शुरू किया, लेकिन और भी बहुत सारी फिल्में थी जो उससे पहले फॉरेन लोकेशंस पे शूट हो चुकी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता बिकॉज इतनी ज्यादा वहाँ पे शूटिंग नहीं हुई थी और वो फिल्में चली भी नहीं थी। जैसे 1960 में शम्मी कपूर साहब एंड पद्मिनी की एक फिल्म आई थी सिंगापुर, जिसका गाना शूट हुआ था सिंगापुर में। फिर 1962 में हांगकांग नाम की एक फिल्म आई थी और उसमें बकायदा बीच साइड पे एक पार्टी चल रही है उस टाइप का एक गाना है जो हेलन जी पे पिक्चराइज्ड है, हांगकांग चीना मीना सिंगापुर ऐसा कुछ गाना है वो। चलिए यहाँ पे हम एक और गाना सुनते हैं जहाँ पे दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड का ही जिक्र हो रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची के साथ।
3: मिर्ची

मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

फॉरेन लोकेशंस में शूट हुई हिंदी फिल्में और हिंदी गाने पुराने वाले। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सो वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स जिसके कुछ पार्ट फॉरेन लोकेशन पे शूट हुए थे, ये थी 1960 की फिल्म कॉल्ड बेवकूफ, जिसमें किशोर कुमार एंड माला सिन्हा थे। इसकी कुछ शूटिंग इटली में हुई थी। ऑल्सो माला सिन्हा एंड धर्मेंद्र स्टारर आंखें फिल्म जो थी, जो कि एक स्पाई थ्रिलर मूवी थी, 1968 की सुपरहिट फिल्म। पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग अगर बेरूत में हुई थी तो वो इस फिल्म की। इनफैक्ट इसका जो गाना है दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, जिसमें फिल्म के तीन किरदार भिखारी बन के घूम रहे हैं सड़कों पे, वो बेरूत की सड़कें हैं। इस फिल्म की शूटिंग जापान में भी हुई है। बट इसका एक और गाना है जो बहुत सुंदर है, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, रवि की कॉम्पोजिशन, लता मंगेशकर की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

One of the most iconic Hindi song ever shot on a foreign location is undoubtedly Do Lafzon Ki Hai Dil Ki Kahani. Mirchi sun rahe hain aap Purani Jeans par, main hoon Charu aapke saath. चलो गाने की वीडियो में इटली में वेनिस में गोंडोला राइड है, बहुत सुंदर है, जिसको बाय द वे फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंता ने खुद शूट किया है, उनके किसी असिस्टेंट या सिनेमेटोग्राफर ने नहीं। तो वीडियो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस तरह से इसके ऑडियो में वहाँ की ट्यून वहाँ के लिरिक्स को इंक्लूड किया गया है ना, दैट इज सो ब्यूटीफुल। हैट्स ऑफ टू आरडी बर्मन। आशा भोसले जी का ये उनका गाया हुआ फेवरेट गाना, कमाल तो लिखा ये आनंद बख्शी साहब ने। और आपको पता है इसमें शुरुआत का जो वो लाला लाला वाला वोकल्स है और वो जो इटालियन में गा रहे हैं, वो एक्चुअली एक इंडियन ने गाया है, उनका नाम है शरद कुमार। तो सुन लेते हैं दिस ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन मिर्ची।

भाई यश चोपड़ा साहब ने स्विट्जरलैंड की लोकेशंस को इतना पॉपुलर बना दिया कि ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ही वहाँ पे हिंदी फिल्मों की या गानों की शूटिंग की शुरुआत की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, पहली हिंदी फिल्म जिसकी स्विट्जरलैंड में शूटिंग हुई थी वो थी 1964 की संगम। यश चोपड़ा साहब की पहली फिल्म जिसकी शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई थी वो थी 1985 की फासले। बट जिस फिल्म से यश चोपड़ा वाला स्विट्जरलैंड पॉपुलर हुआ वो थी 1989 की चांदनी। और इस पर्टिकुलर गाने को जो शूट किया यश चोपड़ा साहब ने, ये वादियों में बर्फीले पहाड़ों में साड़ी पहन के जो सारी की सारी ये लेगेसी जो है इसकी शुरुआत इसी फिल्म से तो हुई थी। श्रीदेवी ने जो साड़ियां पहनी है वो क्या लगी है भाई, कमाल है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्च।

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि 1964 की मूवी संगम वो पहली फिल्म थी जो फॉरेन लोकेशंस पे शूट हुई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। देखो अगर ट्रेंड सेटिंग की बात करें ना कि जिसने फॉरेन लोकेशंस को ऐसे पॉपुलर बना दिया, देन यस दिस वाज द फिल्म। इसी के बाद वो सारी फिल्मों की झड़ी लग गई थी ना, एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंदन, लव इन टोक्यो, अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन अगर इससे पहले की हम बात करें तो काफी मूवीज थी जिसके कुछ पोर्शंस या गाने फॉरेन लोकेशंस पे शूट हुए थे। जैसे एक तो पूरी फिल्म थी 1939 की अफ्रीका में हिंद, ये पूरी की पूरी अफ्रीका में शूट हुई थी। फिर 1954 की एक नाज नाम की फिल्म थी जिसमें अशोक कुमार थे, इसके कुछ पोर्शंस इजिप्ट में शूट हुए थे। देन 1960 में बेवकूफ नाम की फिल्म जिसमें किशोर कुमार माला सिन्हा थे, वो इटली में उसका कुछ पोर्शन शूट हुआ था। फिर 1960 की सिंगापुर, फिर 1962 की हांगकांग। और इनमें से काफी फिल्मों में ना ऐसा भी होता था कि यूनिट के जिन लोगों को फॉरेन ले जाया जाता था उनको उनकी कोई अलग से पेमेंट नहीं होती थी, या होती थी तो बहुत कम होती थी, कि बोलते थे तुमको अभी विदेश घुमा दिया, अभी और पैसे काहे के मांग रहे हो। चलिए जहां मैं यहां वहां से अब रंगून चलते हैं गाने में। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हिंदुस्तान का तेरा तू, हेलो मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैनहट्टन
2: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई बजा